जी एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पहूर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।

0: एक घड़ी मोहत ना लगे।
1: साध संगत जी ऐसा समा गरीब नवाज जी कहिंदे है आ चुका है, ऐह कर करे एक कलयुग दा भयानक है, इस हथ दे नाल करांगे ना सजे नाल ते सजे दे नाल ही उहदा जिहड़ा सानू पाप है वह नाल ही प्राप्त होवेगा उहदा हिसाब किताब। एक घड़ी मोहत ना लगे, एक घड़ी मात्र भी समा, इक्कीआं मिंटां बाहियां दी घड़ी भी नहीं लगेगी, ऐसा समा आवेगा।
0: हांजी चारे युग मैं सोधिया विण संगत अहंकार ना भगै।
1: भगै पबे ते अदक लेके भगै करना, भगै नहीं करना। हांजी
0: हां मैं मूल ना छुट्टई विण साधु सत संगै तिचर थाह ना पावई जिचर साहिब स्यो मान भंगै जिन जान।

नित गर्भ फिरामी फ्रह गुमानी जग मह क्या गर्भ दामी चल दिया नाल ना चल खिन जाए बिलामी बिचर दे फ्रह संसार मह।

पाठ आया इवें नचा पाठ करना। पिछली पंक्ति दे विच मूह तन प्रेम अथाह पसण पसण पाठ करना, पसण नहीं कहना, मूह तन प्रेम अथाह पसण कु सच्चा धनी। सो इसे तरह अगले साध संगत जी जिन्ने पाठ आ रहे हैं, रचा नचा कच्चा खच्चा, फिर अगे लालचा पाठ पूला करना, इस तरह बाकी तकरीबन पाठ कस के ही हैं।

जिन जान गुरमुख सेविया तिन सब सुख पाई ओह आप तरिया कुटंब सियो सब जगत तराई ओन हर नामा धन संचया सब तिखा।

तारण तरन तो बै लग कही है, जब लग तत् न जानिया, अब तो बिमल पए कट ही मह, कह कबीर मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के, छोड़ गया सो रावन, काहे कीजत है मन पावन, जब जम आए।

0: तो बसह पंच किरसाना
1: महतो पाठ ही करना महतो नहीं करना। जिवे ज्ञान जी ने उच्चारण किया है देही गावा जियो धर महतो इथे विश्राम बसह पंच किरसाना
0: नैनो नकटो श्रवनो रसपत इंद्री कहया न मानना।
1: रसपत पाठ भी अलग अलग करना, रसपत इकट्ठा छापे है पर रसपत अलग अलग है।
0: बाबा

0: सिद्ध मिल कै दूलह प्रभ की सरन परयो। मुगत भयो चौहू जुग जान्यो, जस कीरत माथै छत्र धर्यो। राजा राम जपत को ना तर्यो, गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम परयो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक बिराजित, देख प्रताप जम डर्यो। निरपौ पय राम बल गर्जित, जन्म मरन संताप हिर्यो। अम्बरीक कौ दियो अपै पद, राज पपीखन अधिक करयो। नवनिध ठाकुर दई सुदामै, ध्रुव अटल अजहू न टर्यो। भगत हेत मार्यो हर नाखस, नर सिंह रूप होए देह धर्यो। नामा कह भगत बस केसव, अजहू बल के द्वार खरो मारू कबीर जीओ।
1: साधु संगत जी, ए शब्द उपर सरलेख भी दिता है कबीर जी, कबीर का शब्द। अगला ए शब्द भगत कबीर जी दा है, पर मुख सरलेख भगत नामदेव जी दा होण करके तो उत्ते अलग वेरवा गरीब नवाज महाराज जी ने दिता है।
0: दीन बिसारियो रे दीवाने, दीन बिसारियो रे, पेट भरियो पशुआ ज्यो सोयो। मनुख जन्म है हारियो रहाओ, साध संगत कबहू नहीं कीनी। रचियो तंदै झूठ, सुवान सूकर बायस जीवै।

आपस को दीर्घ कर जाना औरन को लाग मात, लाग पाठ पोला ते मात पाठ अलग, लाग ते मात अलग अलग दो शब्द हन, दोवां नूं जे लाग मात कहांगे फिर हुंदा लघु मात्रा, जिहड़ियां आपां मात्रावां लाउने आ। लाग नाम हुंदा छोटा ते मात नाम हुंदा छोटे दी न्याई जानना। सो साध संगत जी अपने आप नूं वड्डा ते दूजियां नूं नीवां छोटा जानदा है तूं, इस प्रकार अलग अलग दोवां नूं पाठां नूं करना। हांजी।

0: अर्ध कौ अर्ध्या सर्ध कौ सर्ध्या सलल कौ सलल सम्मान आया बदत जय देव जय देव कौ रम्या ब्रह्म निर्वाण लिव लीन पाया कबीर मारू राम सिमर
1: संग जी ए मैं पहला में बेनती की थी सी रागा नू ना नखेड़ के पढ़ना चाहिए जिवें अगे भी राग आना राग मारू।

0: राग ते थोड़ा रोक के फेर मारू उचारण करना। इस राग दे विच ना ये जिदा हुण कबीर मारू पाठियां दे मूंह सुनिया कई बार कबीर मारू, ओ मारू नहीं मारू, भगत कबीर जी मारना थोड़ा लगे, मारू दा अर्थ हुंदा डंडे मारने कोई मार लिया। सो इस करके प्यार दे सहत ही उचारण करना, कबीर दो डंडियां लगियां ने अगे, फिर मारू फिर अगे दो डंडियां लगियां। सो इस करके विशेषता दे नाल कल्ले कल्ले पाठ नूं खेड़न ते पता लगदा नहीं ते अर्थ दा अनर्थ बन जांदा। हांजी
1: राम सिमर।

सुनहो रे संतहो साध संगत तर जाहेगा। राग मारू बाणी रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छत्र तरे रहाओ, जाकी छोत जगत को लागे। ता पर तू ही टरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तिलोचन।

0: नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावै गुर सबदी मन धीरा बरसै अमृत धार बूंद सुहावनी साजन मिले सहज सुभाय हर स्यों प्रीत बणी हर मंदर आवै जा प्रभ पावै तन उबी गुण सारी घर घर कंत रवै सोहागण हो क्यों कंत विसारी उनव घन छाए बरस सुभाए मन तन प्रेम सुखावै नानक वरसै अमृत बाणी कर कृपा कर आवै चेत बसंत पला पवर सुहावड़े बन फूले मंज बार मैं पिर घर बाहुड़ै पिर घर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे बिरह विरोध तन छीजै कोकिल अंब सुहावी बोलै क्यों दुख अंक सहीजै पवर पवंता फूली डाली क्यों जीवा मर माए नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वार घर तन पाए वै साख पला साखा वेस करे तन देखे हर द्वार आवो दया करे घर आओ प्यारे दुत्तर तारे तुद बिन अड न मोलो कीमत कौन करे तुद भावा देख दिखा वै ढोलो दूर न जाना अंतर माना हर का महल पछाना नानक वै साखी प्रभ पावे सुरत शब्द मन माना माहो जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरे थल ताप है सर भार सा तन बिनाओ करे तन बिनाओ करे दी गुण सारे दी गुण सारी प्रभ पावा साचे महल रहे बैरागी आवन देह ता आवा निमाणी नितानी हर बिन क्यों पावे सुख महली नानक जेठ जाने तिस जैसी कर्म मिले गुण गहली आषाढ़ भला सूरज गगन तपे ती धरती दुख सहे सुख है अगन पख है अगन रस सुख है मरिये तुख है पीसो कीर्तना हारे रथ फिरे छाया तन तक है टीड लवे मंज बारे
1: तक है पाठ कस के करना रथ पाठ बोला रथ फिरे छाया तन तक है टीड लवे मंज बारे
0: अवगण बाध चली दुख आगे सुख तिस साच संभाले नानक जिसनो एहो मन दिया मरण जीवन प्रभ नाले सावन सरस मना कण वरस है रुते आए मैं मन तन सहु पावे फिर परदेस सिधाए फिर घर नहीं आवे मरिये हावे दामन चमक डराए सेज इकेली खरी दुहेली मरण भया दुख माए हार बिन नींद भूख कहो कैसी कापड़ तन ना सुखावे नानक सा सोहागण कंती फिर कै अंक समावे पादौ परम पुल्ली पर जोबन पछताणी जल थल नीर भरे बरस रुत्ते रंग माणी बरसै निसकाली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते प्रियो प्रियो चवै बबीहा बोले पुयंगम फिर है डसंते मच्छर डंग सायर पर सुभर बिन हर क्यों सुख पाई है नानक पूछ चलो गुरे अपने जह प्रभ तह ही जाई है असुन आओ पिरा सा तन चूर मुई ता मिलिये प्रभ मिले दूजे पाए खुई झूठ विगुत्ती ता पिर मुत्ती कुकह काह से फुले आगे काम पिछे रुत जाडा देख चलत मन डोले दै दिस साख हरी हरियावल सहज पक्के सो

0: तत् जलाया। दीपक रस तेलो तन फिर मेलो, तन ओ माह है सरसे। अवगण मारी मरै न सीजै, गुण मारी ता मरसे। नाम भगत दे निज घर बैठे, अजहो तिनाड़ी आसा। नानक मिलहो कपट दर खोलहो, एक घड़ी खट मासा। मंगर माहो भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवै मैं फिर निहचल पावे। निहचल चतुर सुजान विधाता, चंचल जगत सबाया। ज्ञान ध्यान गुण अंक समाणे, प्रभ भाणे ता पाया। गीत नाद कवित कवे सुन, राम नाम दुख भागै। नानक सा तन नाह प्यारी, अब भक्ति पिरे आगै। पोख तुखार पड़ै, वन त्रिण रस सुखै।
1: पढ़ै पाठ कोला ही करना, पढ़ै नहीं कर देना। पोख तुखार पड़ै, वाण त्रिण रस सुख है।
0: आवत की नाही मन तन वसै मुखे, मन तन रव रहया जग जीवन। गुर सबदी रंग माणी, अंडज जीरज से तज उत पुज। घट घट

साजन सहज मिले गुण गह अंक समानिया प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद भावा सर नावा गंग जमुन तह बेणी संगम सात समुंद समावा पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारस हर जप अठ सठ तीर्थ नाता फलगुन मन रहसी प्रेम सुभाया आनंदिन रहस आनंदिन रहस पया आप गवाया।

हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा जो तुम त्यावह जगदीश ते जान पाओ बिखम तरा बिखम पाओ तिन तरिया सुहेला जिन हर हर नाम त्याया गुर वाक सतगुर जो पाई चले तिन हर हर आप मिलाया ज्योति जोत मिल जोत समाणी हर कृपा कर धरणी धरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया तू अलख अपेय अगम गुर सत गुर बचन लहया धन धन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मेल गुण रवे बबेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन।

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट।

0: ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ? ਜੀਵਨ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਗੀਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਹਰ ਬੋਲ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੋਲ ਰਾਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਰਾਗ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਸਭ ਗੀਤ ਹੈ। ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਰਮ ਕੋ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੀਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਅਸਲੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਜੇ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ, ਅਸਲੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ। ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤਖਤੇ ਤੇ ਵੀ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਸਕੂਨ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗ ਸੁਲੇਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਅਜਾਜ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰੇ ਆਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਅਨਾਹਦ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਜੈਸੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਵਾਜਿਆਂ ਗਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਐਸੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਦੀ ਧੁਨ ਦਾ ਜਨਮ। ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਤੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਗ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਕਾਹਦਾ? ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਤੋ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਲ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਛਿੜਕਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਦ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਸੂਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਇਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਦ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਮਹਿਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਝ ਭਨਕ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਣ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਪ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਚੱਕਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੰਠ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਸਾਧਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜਪਮਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਕ ਦੀ? ਜਿਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? साधक नूं ही किस तरह पहचान होवेगी कि वाकई परमात्मा मेरी रसना ते बैठ गया है। दरअसल हुण रसना नूं रस आवेगा, जैसे वह परमात्मा का नाम लवेगा रस नाल भिज जाएगा, रस नाल डुब जाएगा। आम बंदे भी राम राम कहिंदे ने बड़ी बेसवादी नाल, आम बंदे भी अल्लाह अल्लाह दी धुन उलापदे ने मत्थे ते वट पाके, आम जगत भी वाहिगुरु वाहिगुरु दा चिंतन करदा है अलाप करदा है, लेकिन वाहिगुरु नाल कोई संबंध नहीं, वाहिगुरु रसना ते नहीं। परमात्मा जैसे रसना ते आके बैठदा है, रसना रस नाल भर जांदी है, रसना सच नूं प्रगट करन दे समर्थ हो जांदी है, रसना दे चों झूठ दी मैल सारी दी सारी निकल जांदी है। नाम जपत गोविंद का सूची भई रसना, और किसे तरीके नाल भी जबान नूं सुच्चा नहीं कीता जा सकदा। जिस दिन गोविंद दा नाम जबान दे ते आण के वसदा है, रसना सुची हो जांदी है, रसना पवित्र हो जांदी है। इस तरह दी रसना जद परमात्मा दा नाम लवेगी रस नाल भर जाएगी, दूसरी इस तरह दी रसना चो निकले हुए वाक मिथ्या नहीं जांदे, वह मिथ्या बोल नहीं होंदे। सतगुरु दा फरमान कि अंड बिनासी जेर बिनासी एक साध बचन अटला, साधु दा बचन अटल है। जमीन नास हो सकती है, आसमान नास हो सकता है, चारे खानिया दा अंत हो सकता है, जर्रे जर्रे दा अंत हो सकता है, खत्म हो सकते ने, साधु दा बचन अमिट है, अमर है, व्यापक है। और वो ऐसा बचन जिहदे च परम शक्ति है। एक साधक ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते प्रश्न कीता, पातशाह कुछ लोग बाणी पढ़ते ने या उसकी व्याख्या करते ने, हिरदे तक नहीं पहुंचती, पर कुछ लोग जब बोलते ने विचारते ने उन्हां दे बोल हिरदे तक पहुंचते ने। बाणी ओ ही है, विचार ओ ही है, पर किसी दे बोल हिरदे तक पहुंचते ने, किसी दे नहीं पहुंचते। इहदा कारण संक्षेप विच प्रत्यक्ष प्रमाण दे राही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने समझाने की कोशिश की थी। दो मनुख लियांदे गए, दोवां नूं धनुष बाण दे दित्ते गए, सामने एक निशाना रख दिता गया। एक कमजोर सी, लागर सी, बीमार सी, हड्डियां दा ढांचा सी, कुबड़ा सी, नाले निशानची भी नहीं सी। दूसरा तंदुरुस्त सी, पहलवान सी, शक्तिशाली सी, नाले निशानची भी सी। पहले ने सतगुरु नूं, पहले मनुख नूं जो कमजोर ते लागर है, गुरुदेव कहिंदे ने निशाना मार, तीर चला। जैसे वह धनुष बाण चलांदा है, बाण रस्ते च गिर गया, निशाने ते वजना ते की निशाने तक पहुंचिया भी कोई नहीं, रस्ते च गिर गया। फिर सतगुर ने दूसरे नूं आग्या कीती, तू तीर चला। उन्हें खिंच के जैसे तीर मारिया, तीर निशाने ते लगे, अपनी मंजिल ते अपड़े। सतगुरु कहन लगे, थोड़े सवाल दा ए जवाब है। सतगुरु समझ नहीं आई तो महाराज कहन लगे कि पहले बंदे दा तीर विचकार क्यों गिर गया? महाराज ये निशानची नहीं, नाले कमजोर है, ये चिल्ला ही नहीं चढ़ा सकता, इहदे कोल शक्ति नहीं, इहदे कोल बल नहीं। दूसरे का तीर निशाने तक क्यों पहुंचे है? महाराज शक्तिशाली है, निशानची है, अंदाज जानता है, इस वास्ते इसका तीर निशाने ते पहुंचे है। सतगुरु कहन लगे, जिन्हां दी रसना ते परमात्मा नहीं, उन्हां दे बचना च कोई सत्या नहीं। वो बचन ते कन्ना तक भी नहीं पहुंचते, हिरदे तक किस तरह पहुंचणगे? वो ते सरवण भी सुनण दे च असमर्थ रह जांदे ने, वो बचन रस्ते च गिर जांदे, हिरदे तक पहुंचते ही नहीं। ते जद हिरदे तक पहुंच ही नहीं, ते हिरदे नूं परिवर्तन करन ते किस तरह करन, हिरदे नूं चोट करन ते किस तरह करन, वो बचन रस्ते च गिर जांदे ने। कुछ बचना दे पिछे कमाई दी शक्ति है, जप तप दी शक्ति है, साधना दी शक्ति है, और वो बचन सिद्धे निशाने तक पहुंचते हैं, हिरदे तक पहुंचते हैं, और उत्थे मनुख नूं बचन बयान करने का ढंग भी आ जाता है, किथे की बोलना है, वक्त विचारे सुबंधा होए, उन्हों मौका महल की पहचान भी होंदी है, समय की पहचान भी होंदी है, जैसे व्याह शादी के घर दे च सोग दियां गल्लां फबदियां नहीं, और इसे तरीके नाल मर्ग वाले घर दे च व्याह शादी दे सोले चंगे नहीं लगते, मौका महल दे मुताबक गल करनी यही बंदे दा फर्ज है, और ये फर्ज सनासी उदों पैदा होती है जब जीवन शक्ति विशुद्ध चक्कर नूं विन के अगे लंघदी है, मौका महल दी पहचान बंदे नूं बचन किथे कहना है, कितना कहना है और किस नूं कहना है, इस तरह दा बोध बंदे कोल पूर्ण तौर ते हुंदा है। विशुद्ध चक्कर नूं विन के जैसे जीवन शक्ति अगे लंघदी है, इस तरह दे मनुख दी रसना ते परमात्मा आप हुंदा है, सच नूं प्रगट करन दे च उदी रसना समर्थ होंदी है, और इस तरह दे मनुखां बारे गुरबाणी कहिंदी है, प्रभ जी बसे साध की रसना, लेकिन अजे परम निधि दी प्राप्ति नहीं हुई, अजे परम आनंद दी प्राप्ति नहीं हुई, अद्धी तो ज्यादा वाट तय हो गई, मूलाधार चक्र थल्ले रह गया, सवदिष्टान चक्र थल्ले रह गया, मणिपुर चक्र थल्ले रह गया, अनाहत चक्र तो दूर चले आए, हुण विशुद्ध चक्र नूं विन के जैसे जीवन शक्ति उपर उठी ते पहुंची आ गया चक्र तक, और जैसे चक्कर विनिया गया उत्थे हुण मनुख ते परमात्मा दे च कोई भेद नहीं रह गया, हुण सच खंड वसे निरंकार, सच दे च मनुख है और मनुख दे च सच है। इस अवस्था दे अपड़े होए मनुख दी तस्वीर कशी गुरबाणी ने इंज कीती है, गुर कृपा जह नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सौ ज्यों पानी संग पानी। हुण बूंद सागर तक पहुंच गई, नामे नारायण नहीं भेद, राम कबीरे भेद ना भाई, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। हुण कबीर राम तक पहुंच गए ने, ते भगत कबीर जद इस अवस्था ते पहुंचे, आ गया चक्र नूं विन के अगे लंघे, कहिंदे हुण रब दी तलाश नहीं, हुण रब मेरी तलाश दे च है, हुण परमात्मा मेरी तलाश दे च है। बड़ा सुंदर बचन है उन्हां दा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। हुण ते कबीर दी तलाश है जगत नूं परमात्मा नूं, मैनूं परमात्मा दी तलाश ही नहीं, हुण ते बूंद ही सागर हो गई। इस अवस्था दा जिक्र गुरु नानक देव जी महाराज इंज करदे ने, सागर में बूंद, बूंद में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर। इस अवस्था नूं बयान करना सतगुर कहिंदे ने अकथ कथा है, कथन तो परे है, आ गया चक्र नूं विन के जैसे जीवन शक्ति उपर उठदी है, परम धाम दी प्राप्ति हो गई, सहभंग दी प्राप्ति हो गई, ईश्वर दी प्राप्ति हो गई, सचखंड दी प्राप्ति हो गई। हुण मर के की सचखंड जावणा, हुण जीवदियां जी सचखंड दी झलक वेख लई, कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे। इस अवस्था तक करीबन करीबन करोड़ां दे कोई एक कद मनुख पहुंचदा है, जन नानक कोटन में किन्हों नारायण जहे चीत। अक्सर साधक मूलाधार तक ही रह जांदे ने, कुछ ऐसे ने थोड़ा जिहा होर अगा वधदे ने, कुछ ऐसे ने अध विचकार विच ही रुक जांदे ने, और उन्हां दे पिछे मुड़न की संभावना भी बनी रहिंदी है, क्योंकि संसार की अपनी खिच है और निरंकार की अपनी खिच है। संसार की कशिश का दायरा अपना है, निरंकार की कशिश का दायरा अपना है। इस वास्ते असी कई दफा देखते हैं कि कोई बंदा बड़ी बुलंदियों तो गिरिया है, तो जब बड़ी बुलंदियों तो गिरदा है चोट भी बड़ी लगती है, रेजा रेजा हो जाता बंदा, फीता फीता हो जाता है। ये तो बहुत शिखर है, बुलंदी है, सूरी ऊपर खेरना इते गिरे तां ठाहरना है, इते घाटी ते चढ़ना है, इते पहाड़ां दी शिखर नूं छूना है, पर जे गिरे तो चोटा भी अनंत ने, फिर खराशा भी अनंत ने। और इतनी गल स्पष्ट है कि जोड़ा जितनी ज्यादा बुलंदी तो गिरेगा उतनी ही चोटा खावेगा, उतना ही जो है जख्मी होवेगा। इस अवस्था विच पहुंच के आग्या चक्र तो अगे लंघ के गिरन की संभावना खत्म हो गई, यात्रा सफल हो गई, जीवन सफल हो गया। सतगुरु की बाणी का फरमान, सफल सफल सफल भई यात्रा, आवण जाण रहे मिले सादा। हुण आवणे जावणे मुक गए, क्योंकि बार बार का जन्म होंदा है वासना करके, तो वासना ही खत्म। हुण ते प्रार्थना का जगत, हुण ते ईश्वरी जगत, हुण निरंकार की दुनिया, हुण ते परमात्मा की दुनिया। जप आरंभ कीता सी तो जीवन शक्ति मूल आधार तो थल्ले सी, वासना दा जगत सी। अगर ऐसा बंदा जप भी करदा सी, प्रार्थना भी करदा सी, तो वासना वस होके करदा सी। धन मिले, रूप मिले, रंग मिले, पदार्थ मिले, उदी बंदगी देच भी वासना सी, उदे जप तप देच भी वासना सी। लेकिन सहजे सहजे जप तप ने मूल आधार तो उपर कीता, वासना दा जगत खत्म होया। और सहजे सहजे साधक साधना करदिया करदिया आग्या चक्र तक पहुंचया और इसनों विन के अगे लंघया, निरंकार दी दुनिया आरंभ हुई, नवे दरवाजे खुले, कोई नवी सोच मिली, कोई नवी दुनिया की झलक मिली। और जद कोई पुरुष इस दुनिया दे पहुंचे है, ते जद उसनु आख्या गया है हुण इस दुनिया दा कोई नक्शा रखो सामने, तो अक्सर इस तरह दे भगतां ने कह दिता है, कहत कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। हुण असी कुछ नहीं कह सकते, मूलाधार तो अगे लंघे सन, कुछ बयान कर दे रहे। सवदिष्टान मणिपुर तो अगे लंघे सन, भगत बोल दे रहे। अनाहद नाद ते विशुद्ध तो अगे लंघे सन, भगत कुछ कहंदे रहे। खामोशी दी दुनिया आरंभ हो गई, समाधि दी दुनिया शुरू हो गई। इत्थे आके गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज वर्णन करदे ने, बिसम बिसम बिसमे ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कार आए। गुंगा मुस्कुराते पैंदा है, उदा मुस्कुरावना दसदा है, परम रस आया इसनों बयान नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता। इत्थे भगत खामोश हो जांदा है, चुप हो जांदा है, पर उसकी चुप्पी भी जो बोल जांदी है, उदी खामोशी भी जितना उपदेश कर जांदी है, आम बंदियां दा बोलना भी उतना नहीं समझा सकता। आम बंदियां दे बोल भी इतने कम नहीं करते। इस तरह के पुरुष से अबोल अवस्था भी बड़ी कम कर जाती है, खामोशी भी जो है बड़ी कम कर जाती है। तो आग्या चक्र नूं विन के जिहड़ी अगे दी दुनिया है, इहदे बारे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमान करते हैं, जे हो जाना, जे मैं उस दुनिया नूं जान लिया है, समझ लिया है, जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई। वो मेरी कथनी तो परे, वो मेरे कहने तो परे, वो ऐसी दुनिया जो मेरे शब्दों च नहीं आउंदी, मेरे बोलन दे च नहीं आउंदी, वो अबोल, वो खामोशी दी दुनिया, वो समाधि दी दुनिया, वो निर्विचार दी दुनिया, वो परम आनंद दी दुनिया, वो सचखंड दी दुनिया, यही बंदे दी मंजिल है। इत्थे पहुंच के ही बंदा पूरा होंदा है, मर के कोई पूरा नहीं आउंदा। ये गल वखरी एक पंजाबी दी कहावत है, जद कोई बंदा मर जाए तो कहिंदे ने पूरा हो गया, पूरा हो गया। पूरा किस तरह होया, मर के ते कोई पूरा नहीं आउंदा, हां पूरन विच जुड़ के ही कोई पूरा हो सकदा है। ते पूरन केवल परमात्मा है, आद पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वर। उस पूरन विच लीन होके ही मनुख पूरा होंदा है, और पूरा केवल परमात्मा है। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जांका नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। इस अवस्था विच पहुंचे हुए मनुख नूं असीं कह सकदे हां पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है। ए इंसान जमया अधूरा सी, जीविया अधूरा सी, भजन ने, सिमरन ने, साधना ने इसनु पूर्ण कर दिता है, मुकम्मल कर दिता है। इतनी ते विज्ञानक भी गल मनदे ने कि मनुखी बच्चा अधूरा जमदा है, मुंह विच दंद नहीं ने, पैरां दे चलण दी शक्ति नहीं है, हाथां विच पकड़ दी कोई ताकत नहीं है, जबान विच बोलन तक दी भी शक्ति नहीं है, बुद्धि विच सोचण तक दी भी शक्ति नहीं है, बिल्कुल अधूरा जमे है। सहजे सहजे कादर करीम परिपूर्ण परमात्मा दी सहजी प्रकृति उहदे शरीर नूं पूरा कर दी है, और मुकम्मल हो जाता है 14-15 साल तक। पैरां दे चलन दी शक्ति आ गई, हत्थां दे पकड़न दी शक्ति आ गई, जबान दे बोलन दी शक्ति आ गई, पूर्ण तौर ते बुद्धि पूर्ण तौर ते सोचन भी लग पे और दंद मिल गए, वस्तु नूं चबाउण दा भी पूरा बल मिल गया। लेकिन चेतना ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है, शक्ति ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है जद पूर्ण नाल जुड़दी है ते पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ईश्वर है। कई दफा बंदा बाहरों पूरा हो जाता है, अंदरों अधूरा रह जाता है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

सत्संग जी माहौल दे मुताबक इतिहास दे कुछ पन्ने मुल्की हालात नूं थोड़े इत्थों दे हालात नूं सामने रखदे आया बयान करन दी निमाणी कोशिश करां। पेशतर सनेमर गुरदेव दी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। मनुख दा मन शक्ति तो प्रभावित है ताकत तो। अरदास दियां ये पहलियां पंक्तियां प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दया है। भगवती मीन शक्ति, भगवती शक्ति नूं कहिंदे। हुण मैं अर्ज करां ईश्वर एक शक्ति है व्यक्ति नहीं। ध्यान नाल सरवण करना। मैं पहले भी अर्ज कीती सी कथा किसी थां तो आरंभ करनी पैंदी है किसी थां समाप्त करनी पैंदी है। कई दफा कुछ गल्लां मैनूं रिपीट इस वास्ते करनियां पैंदियां ने कि जो बाद दे चांदे ने उन्हां दे फिर पल्ले कुछ नहीं पैणा। कीर्तन किसे थां तों वी असीं सुण सकदे आ, विचार बारे इह गल नहीं है। किसे थां तों सुणीए तां कुछ पल्ले नहीं पैगा। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दया है। भगवती मीन शक्ति, ईश्वर एक शक्ति है व्यक्ति नहीं। अगर ईश्वर नूं व्यक्ति मन लईए ना तो फिर उसका जन्म भी मनना पड़ेगा। जन्म मन लईए तो फिर मरण भी मनना पड़ेगा। मैं उस दिन अर्ज कीती सी संसार दो रंगी है, कोई ऐसा जन्म नहीं जेदे पिछे मरण नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान, अजन्म है अमरण है। तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी कोई मौत नहीं। अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए तो फिर उसके मां बाप भी मनने पैणगे। सिर्फ मां बाप ही नहीं, उसकी जात पात भी मननी पैगी। फिर परमात्मा की कोई जात भी होगी। सतगुरु कहिंदे ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है। थोड़े विचों जिहड़े जाप साहिब पढ़दे होणगे जरूर बोध होवेगा। अगर उसनों व्यक्ति मन लईए तो उहदा कोई रंग रूप नस्ल भी मननी पएगी। केड़ी नस्ल दा है? आर्यन नस्ल है, मंगोल नस्ल है, आखिर केड़ी नस्ल है? काला है, गोरा है, सांवरे रंग दा है, जर्दी महिला या रंग की है? खलड़ी दा रंग उसका कैसा है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करदे ने अरूप है अनूप है, कोई रूप नहीं। अत्यंत सुंदर है फिर भी कोई रूप नहीं। अगर उसनु व्यक्ति मनदे हां तो लाजमी कोई रंग रूप मनना पेगा। साहिब कहन चक्र चेन अर बरन जात अर पात नहिन जे, रूप रंग अर रेख भेक को कह न सकत कह। अगर उसनु व्यक्ति मनिए तो उस परमात्मा दा कोई मजहब भी होवेगा। हिंदू होवेगा, मुस्लिम होवेगा, सिख होवेगा, ईसाई होवेगा, यहूदी होवेगा, पारसी होवेगा, जैनी होवेगा, बोधी होवेगा, कुछ ना कुछ होवेगा अगर वो व्यक्ति है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत देखो, फरमान करते ने नमस्तम अमजबे नमस्तस्त अजबे। तेरा कोई मजहब नहीं। जब तू रंग रूप रेख तो न्यारा है, जात पात तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, तेरा कोई मजहब नहीं है।
तो हिंदू नहीं है, तो सिख भी नहीं है, तो मुस्लिम नहीं है, तो क्रिश्चियन भी नहीं है। शब्द मैं फिर थोड़े सामने रखा गुरु गोविंद सिंह जी के, नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तंग अमजबे, नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है तेनो, तू अजब स्वरूप है, तू अजब स्वरूप है। दो नुक्ते होर बयान करके मैं कुछ इतिहास दे पन्ने रखने ने थोड़े सामने। अगर उसनु व्यक्ति मन लईए ना, तो व्यक्ति एक समय च एक ही थां ते आउंदा है। जिवें तुसी इत्थे गुरुद्वारा साहब बैठे हो, अपने घर दे च नहीं हो। व्यक्ति एक समय एक ही थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है, तो सतवें पाताल या सतवें आसमान या कोई से सचखंड बैकुंठ दे च बैठा होगा, कम से कम इत्थे ते कोई नहीं, व्यक्ति दी तरह कोई नहीं। अगर है तो फिर कहो केड़ा व्यक्ति रब है, खुदा है, परमात्मा। व्यक्ति एक समय एक कोई थां ते आंदा है, सारी थावां ते नहीं आंदा। सतगुरां दी बाणी कहंदी है, तू सबनी थाई जिथे हों जाई, साचा सिरजन हार जियो। हे सिरजन हार, मैं जिथे जाना तू उथे है, तू ते व्यापक है। व्यक्ति व्यापक नहीं हो सकता। अगर उसनु व्यक्ति मन लिये, तो व्यक्ति सर्वकाल भी नहीं, हर समय नहीं है। जिवें असी 20, 30, 40, 50, 60 साल पहले नहीं सी, नहीं से हर एक बार ये गल आखी जा सकती है, ते हर एक 10, 20, 30, 40 साल बाद नहीं होवेगा। बाबा फरीद कहंदे ने, फरीदा किथे तेडे मापिया, जिन्ने तू जनिया, कल ते मां है सी। बाबा फरीद कहंदे पता नहीं किथे चली गई, 5 साल पहले ते पिता है सी, आज कोई नहीं। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है, तो परमात्मा नु भी काल दिच बयान करना पेगा, समय दिच बयान करना पेगा। इंज आखांगे परमात्मा होया सी या परमात्मा होवेगा। कलगीधर पातशाह कहंदे अकाल है, अजाल है, उस समय दिच नहीं है, वो है सो है। होया सी नहीं कह सकते, होवेगा नहीं कह सकते, वो है सो है, समय तो बाहर है। अगर परमात्मा नु व्यक्ति मन लईए, इस नुक्ते नु बयान करना जरूरी सी। तो एक होर प्रश्न भी खड़ा होवेगा, क्योंकि व्यक्ति दे दो रूप ने, स्त्री और पुरुष। परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। इसनु बड़े विस्तार सहित गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने बयान किया, पर इस वक्त मैं नहीं छेड़ना, क्योंकि आप पुरम मना रहे। तो फैसला करना पड़ेगा परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है। अगर व्यक्ति है, जिन्ना जिन्ना ने भी व्यक्ति दे रूप च मने है, वो किधरे पुरुष दी पूजा किधरे नारी दी पूजा तो बच नहीं सके। ते गुरु ग्रंथ साहब दा फैसला है, जैसा सेवे तैसा होए, जैसा परमात्मा नु मनोगे वैसे ही हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। जिस दे विचार करिए, जिनू सोचिए, जिनू याद करिए, मनुख दा मन वैसा ही हो जांदा है। तन ते एक दिन खाक हो जाना है, राख हो जाना है, अगों साडा संस्कारां दा ढांचा जांदा है। अगर उस विच स्त्री चिंतन सी, स्त्री दियां यादां सन, स्त्री दी विचार सी, अगला जन्म फिर स्त्री दा। महामाई की पूजा करे नर से नार होए औतरे, गुरबाणी दा फैसला। वो व्यक्ति नहीं है, इस वास्ते वो स्त्री ते पुरुष भी नहीं है।
धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने धनाश्री राग दे सुन मंडल एक जोगी वैसे नार ना पुरख कहो को कैसे। सुन मंडल निर्विचार अवस्था उन्हों सुन समाधि कहने सुन समाद अनहद तैनाद कहन ना जाई अचर्ज बिस्माद। जिस दिन चलदे हुए विचार मन विच रुक जांदे निरंकार प्रगट हो जांदा है। जद कोई भी फुरना ना चले कोई भी विचार ना चले उन्हों गुरु अर्जन देव जी सुन समाध कहंदे ने। सुखमनी साहब की पंक्ति सुन समाध अनहद तैनाद कितना भी पाठ करदे अंदर साडे विचार चलदे ने। कितना भी वाहेगुरु जपी अंदर अपने अपने फुरने चलदे ने। कितना ही कथा कीर्तन सुनिए ते करी अंदर फुरने चलदे ने ओ नहीं रुकदे। सुन समाद अनहद तैनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद। सुन समाद अवस्था देच जर्रे जर्रे नाल एक जुड़िया दिखाई दे रहा है। महाराज कहने स्त्री पुरुष नहीं है। सुन मंडल एक जोगी वैसे नार ना पुरख कहो को कैसे। तो हुण मुख्तसर में अर्ज करा परमात्मा की ये शक्ति है व्यक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति है रंग रूप तो न्यारी चक्र चैन तो न्यारी वर्ण जात तो न्यारी मजहब तो न्यारी एक व्यापक शक्ति है। पर शक्ति तो मुराद किधरे ए ना ले लेना कि जड़ है नहीं चेतन है। उस शक्ति नो भारत दे प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने इंज कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है सदीवी है। शिवम प्रकाशमान है शिव दे अर्थ प्रकाश चानना प्रकाशमान है। सुंदरम अति सुंदर है अति सुंदर है। इन्हों गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते ने सत सुहाण सदा मन चाओ। तू सत है सुहाण अति सुंदर है सदा मन चाओ तू सदीवी खिड़िया होया आनंद स्वरूप है। वैदिक ऋषियां ने भी ऐसा कहा सत चित आनंद। वो सत है चित चेतन है जड़ नहीं है। शक्ति ते अग दे च भी है अग जड़ है। शक्ति ते पानी दे च भी है पानी जड़ है। शक्ति ते पवन दे च भी है पवन जड़ है। परमात्मा शक्ति है पर चेतन सत चित आनंद आनंद स्वरूप है। यही कारण है कि मनुख की चेतना शक्ति तो प्रभावित है मनुख ताकत तो प्रभावित है। मैं सवेरे इस विचार नु सामने रखिया सी जिथे ताण हुंदा उत्थे माण हुंदा। इस वास्ते हर मनुख ताण की तलाश च है शक्ति की तलाश च है। ते दूर क्यों जाओ परमात्मा एक शक्ति है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले दिया ऐसी शक्ति जो रंग रूप तो न्यारी है। सारा आकार उस तो आया है जिदा कोई आकार नहीं। सारा रूप उस तो आउंदा है जिदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उस तो आउंदे ने जिदा कोई रंग नहीं। चलो मैं अद्धा मिनट इस ते भी ले लवां। एक फुल खिड़े है रंग लेके रूप लेके सुगंध लेके आकार लेके ध्यान बख्शना। सहजे सहजे फुल मुरझा गया रंग खो गया। हुण पुछिए रंग किथे चला गया। रंग उथे चला गया जिदा कोई रंग नहीं। फिर बहुत सुक गया फुल दा रूप भी खो गया। ए रूप किथे चला गया। ए रूप उथे चला गया जिदा कोई रूप नहीं। एक दिन फुल दा आकार भी खो गया। आकार किथे चला गया। आकार उथे चला गया जिदा कोई आकार नहीं।
ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿ

खुदा क्या, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। गुरु नानक कहने में सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने। जैसे सूरज का कोई एक नाम तो नहीं है, सूरज नू सन कहिंदे ने, सूरज नू भान कहिंदे ने, सूरज नू रवि कहिंदे ने, सूरज नू सूरज कहिंदे ने, सूरज नू खुर्शीद कहिंदे ने, सूरज नू आफताब कहिंदे ने, कोई एक नाम है। दुनिया दियां सैकड़े भाषावां दे सूरज दे अलग अलग नाम ने, सूरज दे अलग अलग नाम ने, कोई झगड़ा नहीं। परमात्मा दे अगले अलग नाम ने बड़ी झगड़े ने, कल कलेश है, बड़ी दुविधा है। नामां ते झगड़ा है, सूरज दे नामां ते झगड़ा नहीं, और सूरज दा एक नाम भी नहीं है। सूरज नूं संस्कृत दे च भान कहिंदे ने, संस्कृत दे च रवि कहिंदे ने, दो नाम ने, रवि ए भान है, ए रवि है, ए सूरज है, ए आफताब है, ए खुर्शीद है, ए सन है। कबूल है, ठीक है। जिहड़ा सन है ओही आफताब है, जो आफताब है ओही खुर्शीद है, जिहड़ा खुर्शीद है ओही सूरज है, जिहड़ा सूरज है ओही भान है, जिहड़ा भान है ओही रवि है। सानू कबूल है, पर जिहड़ा खुदा है ओही राम है, जिहड़ा राम है ओही अल्लाह है, जिहड़ा अल्लाह है ओही गोबिंद है। इस ते बड़े झगड़े ने, इस ते बड़ा कलेश है, इस ते बड़ा अनर्थ है। इस वास्ते पता है धार्मिक सियाने पुरुष की कहंदे ने, जितनी अज्ञानता धर्म दी दुनिया दे च है, इतनी अज्ञानता समाज दे च, अर्थव्यवस्था दे च और राजनीति दे च नहीं है, जितना अज्ञान धर्म दी दुनिया च। समाज दे संबंधां दे च, अर्थव्यवस्था दे च, राजनीति दे च इतनी मूढ़ता नहीं है जितनी मूढ़ता धर्म दी दुनिया च। दसों गुरु साहिबान ने सानू ज्ञान दा पुजारी बनाया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ज्ञान दे स्वरूप ने, और कलगीधर पातशाह कहिंदे ने, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम बेबहुत लगा। इक्को ही पुन है ज्ञान, उस मनुख तो सब कुछ ठीक होवेगा। इक्को ही पाप है अज्ञान, ये जो कुछ भी करेगा गलत करेगा, ठीक हो ही नहीं सकता। इस नूं पूर्ण खुलासे दे रूप ते किसे वक्त मैं फिर बयान करांगा, पर हुण इतना ही अर्ज करा, परमात्मा एक शक्ति है, एक शक्ति है, एक ताकत है। इस शक्ति नूं दो नाम दिते ने, सत ते सता। सत ते सता। एक मनुख कोल बाहर दी ताकत है। साडे देश दे च इक ऋषि होया है जिहदा नां सी सहनसर बाहो, हजारां बावां वाला ऋषि। हजारां बावां नहीं आउंदियां, अगर हजारां बावां एक बंदे दियां उन ते सारे हाल च मेरे खले कोई बंदा बैठेगा, मुश्किल है एक भी बैठ सके हजारां बावां। वो चलदा फिरदा किस तरह होवेगा। जिहड़े समझाण दे प्रतीक ने ना, अगर उन्हां दी कोई गहराई च ना जावे तो बड़े भुलेखे पै जांदे ने। सहन सर बाओ, दो हत्थां दे च हजारां हत्थां वर्गी ताकत, दो हत्थां च इतनी समर्था कि हजारां बंदियां दे हत्थ जुड़ जाण उस दे अगों, तो सहन सर बाओ हो गए और की है। ओहदे अगों हजारां बंदे हथ जोड़ के खड़े हो गए, सहन सर बाओ। दह सिर कहिंदे रावण दे दस सिर सन, नहीं, दस सिर जितना सोच सकदे ने उह कल्ला सोचदा सी, दस सिर जितना याद कर सकदे ने उह कल्ला करदा सी। तदी ते उसकी लंका सोने दी सी, तदी ते चंद सूरज तांके तपत रसोई। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी कहिंदी है उस जमाने च ओहदे महलां दे सूरज दी शक्ति नाल चुल्ले जलदे सन, रसोई दे च उस जमाने च। साइंस ने ते अज ये कमाल हासिल कीता है, रावण ने उदों हासिल कीता होया। महलां दे कलस उन्हें सोने नाल

छोटा कष्ट। जहान वाले सुन लो, मैं वड्डी गल कह रहा, हुण मेरा कष्ट चला जाना, क्यों? मैनू रब लभ पिया, वड्डा घर लभ पिया।

0: परपरी मन दे।
1: तन भी कंचन हो गया मन भी
2: परी संगत महाराज कहते आज तो एदा नाम मुरारी है प्रेमा कौड़ी महाराज कहते मुरारी नाल कौड़ी बोलना औखा हो अख सत एदा नाम सी मुरारी रख दे हूं एक जकारा देना जेड़ा मैं हिल गया पढ़ गुरु अमरदास जी ने नदर करके ए मुरारी प्रेम कौड़ी नू मुरारी नू ए नदर करके एहो जी अवस्था ते पुजा दिता के नाम दूजे नू जपान वाली सत्या दे दे दूजे

0: है गुरु लगेगा। हाँ है टेक एक रघु,
1: मैं बिच ही बोल रहा जेड़ा दिल्ली तो जथा भाई मती दा सेवा सोसाइटी दे आए ने, सालाना प्रोग्राम होया गुरु रामदास दे घर शुकराना करन आए ने, वो सारा जथा इत्थे अगे आ जावे, बाकी सारे बैठे रहो। इसे तरह ही एक अद्धे मिनट समाप्ति है, बीबी जगजीत कौर नाल सारियां आईयां भैणां वीर, वो जिथे बैठे ने उठ के अगे आ जाण, टाइम बजेगा अगला। सुनियो जी, शिया उपल खत्री वो कहता है ऐस सिख तो भगाला केड़ा होएगा जिन्हों गुरु अमरदास महाराज ने इनिया दातां दे दित्तियां। आखो सतनाम

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: कुछ भी नहीं। ऐसे मनुखां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा। हिटलर जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा। हरनाकस जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा। कितना मूड, कितना अचेत, पशुआं नूं मात कर गया। 7 साल दे प्रहलाद नूं, मासूम बच्चा है, हरनाकस कहिंदा है, तूं जपया कर, जल हरनाकस, थल हरनाकस, ताकि तैनूं वेख के होर बच्चे भी जपन, ते असीं निरंकार करके दुनिया विच जाणे जाईए। निरंकार होण दी तौफीक मनुख नूं निरंकार ने दित्ती है। ध्यान नाल सुनना, निरंकार होण दी उमंग ते तड़प भी मनुख नूं दित्ती है। मनुख ऐसा जीवन चाहुंदा जिहदे च मौत ना होवे। ऐसा जीवन केवल परमात्मा कोल है जिहदे कोल मौत नहीं। मनुख ऐसा रस चाहता है जो कदी बेरस ना होवे। तो ऐसा महारस ते परमात्मा ही है। मनुख ऐसा सुख चाहता है जो कदी दुख दे च ना बदले। ऐसा सुख ते केवल परमात्मा। मनुख ऐसी शक्ति चाहता है जो कदी कमजोरी दे च ना बदले। उस महाशक्ति दा ना ही ते परमात्मा है, और की है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, होना चाहता है। परमात्मा होण दी सौगात परमात्मा ने हर मनुख नूं दित्ती है, हर एक नूं दित्ती है। किस तरह? परमात्मा वेखदा है, सब कुछ वेखदा है, मनुख भी वेखदा है। एक गल वखरी है, सब कुछ नूं वेखण दी तौफीक नहीं, पर वेखदा। परमात्मा सुणदा है, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी है। सदा वेखदा पै, सबनों वेखदा पै, सबनों सुणदा पै, सदा सुणदा पै। ठाकर हमरा सद बोलनता, सदा बोलदा पै, और उदा बोल सारी दुनिया विच गूंजरे है। अनाहद ना मनुख भी सुणदा है, वेखदा है, मनुख भी समझदा है, पर सीमत है। मनुख भी जानदा है पर सीमत है। ये असीम होना चाहता है, असीम तो केवल परमात्मा ही है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, परमात्मा होण दी इस दे अंदर भुख है, और इंज कह लो शायद परमात्मा नहीं पाई है। और ऐसा हो सके, परमात्मा हो सके, ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दित्ती है। शायद इसे वासे जफर कहिंदा है, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, ऊरे गिलमा को। मनुख तो वद परमात्मा ने किसे नो नहीं बनाया, क्योंकि मनुख दा ही भविष्य है परमात्मा होना। पशुआं दा भविष्य अजे मनुख होना है, वनस्पति दा भविष्य अजे पशु होना है, पत्थरां दा भविष्य अजे वनस्पति होना है। केवल मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना। फरवरी दा महीना पिछलिया, इस साल दे जो लंघे, मैं कानपुर दे सी, सज्जन मित्र नाल सन। अमृत वेले मैं नितनेम पिया करां ते फोन आई दिल्ली तो। मैं खैर होवे सही है, अमृत वेले 4:30 बजे कि कौन फोन करदा। दिल्ली तो एक नौजवान पुछना चाहता है मैनू, कोई मस्कीन जी सुने है, तुसी भविष्य वक्ता हो, भविष्य जानते हो? मैं कहां जानना, भविष्य वक्ता, भविष्य जानना। कहन लगे अज की फिर तुसी आ रहे हो ना दिल्ली, की बाई संत बाबा अतर सिंह जी की बरसी ते मैं पहुंचना सी, तुसी आ रहे हो, असी पोस्टर पढ़े ने, असी थोड़े कोल आवांगे अपना भविष्य जानने वास्ते। मैं कहो दो ते गल बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत दिन पए ने, मैं थानू हुणे ही भविष्य दस देना, तुसी हुणे ही पुछ लो। कहिंदे हुणे ही दस दोगे, फोन ते दस दोगे? मैं कहा हुणे ही दस दें। तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा केवल तेरा ही नहीं, तेरे सारे परिवार दा, सारे संसार दे मनुखां दा इक्को ही भविष्य है परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं। चंगा परिवार मिल गया तृप्ति नहीं मिलेगी, चंगा कारोबार मिल गया परेशानियां नहीं जानगी, बड़ी धन संपदा मिल गई रैन उच्चा महल मकान मिल गया बेचैनी नहीं जाएगी, बड़ा बैंक बैलेंस हो गया नोटा दे अंबार लग गए ने व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदो मिटन गए जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा कि होया तू चोटी दा धनवान हो, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी कि होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर हो, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा कि होया तू बहुत वड्डा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, कि होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत वड्डा हो गया, दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, भगत कबीर ऐलानिया कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई साच भयो अन कते न जाए। कंदा संतां दी संगत विच आपा ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए, हुण सच ते परमात्मा, तो कबीर कहंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपा भी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई साच भयो अन कते न जाई, मैं सच हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी, मैं कह सारे मनुखां दा एको ही भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने सारिया नु दिते हुए ने, सीमित ने ये असीम हो सकते ने, उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए, पहले दर तक पहुंची है, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिया का और मुखी सजना का, बार बार धन्यवाद, फुल चुकदी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott.

चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मानिया चतुर चक्र दानिया।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿ Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
0: Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।

पौड़ी दान भिंडा तली खाक जे मिला तमस्त कलाइए कूड़ा लाज छड़िए हो एक मना लागती आइए फल देवे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया था तुर दिन।

0: गोर ज्ञान गुरु हार मंगिया राम।
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु गरीब नवाज, चवर शतर और तख्त के मालिक, जहरा जहूर हाजरा हजूर, नाम बाणी के बोहित कलजो की ओट। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जीवड अवर न कोए। निरंकार दे सरगुण स्वरूप निरंजनी ज्योत, तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने अपार कृपा कीती है। आप दर आईया संगतां नूं पवित्र दर्शन दीदारे और धुर की बाणी राही सच्चे पातशाह जी निहाल कर रहे हैं। आवी

दर्रे तो लेके सूरज तक, कीड़ी तो लेके हाथी तक ओही विराजमान। वो कीड़ी दे च भी है, हाथी दे च भी है, वो जर्रे दे च भी है, वो सूरज दे च भी है। अस्थि कीटी त्रिलो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। वो ऐसा है, पूरे आया अपने कृत दे च, पूरे आया। उदे स्वभाव दिच भय नहीं है, वैर नहीं है। मनुख दी पहचान एक ते रूप तो होंदी है, एक उसदे स्वभाव तो होंदी है। हो सकदा रूप बड़ा सुंदर होवे, स्वभाव बड़ा भैड़ा होवे। हो सकदा स्वभाव बड़ा चंगा होवे, रूप बड़ा भैड़ा होवे, कुरूप होवे, चंगा ना लगे। अष्टावक्र, लत्तां भी टेढ़ियां, बांवां भी टेढ़ियां, कमर भी टेढ़ी, गर्दन भी, अठ थां तो शरीर दे च बल करो। उस जमाने दे च दुनिया दा सब तो करूप मनुख अष्टावक्र, पर उस जमाने दा मन करके स्वभाव करके सब तो सुंदर मनुख अष्टावक्र। तन करके बदसूरत है, मन करके खूबसूरत है, स्वभाव चंगा है। तो एक बंदे दी पहचान होंदी है उसदे रूप तो, दूजी पहचान होंदी है उसदे स्वभाव तो। परमात्मा दा स्वरूप वो एक है, उस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रही है, जो कुछ हो रहा है उसे तो हो रहा है। वो सदीवी है, कायम दायम है, करता अपनी कृत दे च पूरे होया। उदे स्वभाव दे च भय नहीं है, वैर नहीं है, निर्वैर है, निर्भय। उदे अंदर भय नहीं है, वैर नहीं है। जिथे उदे स्वभाव दे च भय नहीं है, वैर नहीं है, उथे उसदे स्वभाव दे च उदी होंद दे च समा भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। इसनों मैं खोला ते मंगलाचरण मूल मंत्र दे ची समा लग जाएगा, उदे समा भी नहीं है। परमात्मा समा नहीं है, अकाल। काल समय नू कहंदे, वक्त नू कहंदे। एक निक्का जिहा नुक्ता, तन नू भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिदा है, जगह चाहिदी है। जगह ही नहीं है, मनुख किथे बैठेगा, जगह ही नहीं है, किथे काम करेगा, जगह ही नहीं है, किवें भजेगा दौड़ेगा। तन भजदा है, दौड़दा है, उठदा है, बैठदा है, काम करदा है स्थान दे च। मन भजदा है समय दे च, इनू स्थान दी लोड़ नहीं है। इत्थे बैठिया बैठिया भी मन दौड़ रहा है। मन समय दे च दौड़दा है। केड़े समय दौड़दा है? गुजरे हुए समय दियां यादां च चला जांदा है, आने वाले समय की चिंता चला जाता है। मनुख कदी चिंता च बैठा होंदा, कदी यादां च डुबिया बैठा। गुजरे समय दियां यादां दा सिर ते बोझ, आने वाले समय की चिंता दा बोझ। किसी वक्त फिर खुलासा। परमात्मा उस समय दे च उत्थे समा ही नहीं है, समय परमात्मा करके है। समय करके परमात्मा नहीं, असी समय करके हां। सानू समय ने बनाया, सिर्फ समय ने बनाया ही नहीं, काल ने बनाया नहीं। सानू काल खा भी जाएगा, समा खा भी जाएगा। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए सूजू अवतरा, काल पाए कर विसन प्रगासा। सकल काल का किया तुमा सारा आकार, ते संसार काल दा तमाशा है, समय दा तमाशा है। जो समय च बने है समा मिटा देगा, जो समय दे च आया है समा उसनो रुखसत कर देगा, जो समय दे च बने है समा उसनो मिटा देगा। उस समय करके नहीं है परमात्मा, परमात्मा करके समय। इस वास्ते अकाल कोई ना समझे कल्पना मात्र है, मूर्तिमान है, मूर्त है। ते मूर्त तो मुराद फिर एकदम बन जाई, किसे ने घड़िया होवेगा, किसे तो जमया होवेगा। एकदम सतगुरु कहंदे अजौनी, जमया नहीं, अजन्म है, अमरण है, जमया नहीं है। तो फिर कैसे है? सैभं, संस्कृत दा शब्द है स्वयं भू, अपने आप तो प्रभू होया, अपने आप तो प्रगट होया। आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना। सैभं
शंभू स्वयंभू पंजाबी रूप सैभंग अपने आप तो आप ही होया है। फिर सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है वो जड़ा एक है वो गुरु है। ज्ञान गुरु है, ज्ञान सारा परमात्मा तो आ रहा है। ज्ञान ही थे गुरु है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम वे बहुत लगाओ। सब कुछ जिथे परमात्मा तो आया है ज्ञान भी उसे तो आया है। कोई गैर गंभीर कविता किसी कवि की नहीं आती, परमात्मा की आती है। कवि की पकड़ दे आ गई, उदय पांडे समा गई। कोई ज्ञान मनुख का नहीं आता, सब परमात्मा का। जद कोई कह देंदा है ज्ञान मेरा है, उसे ज्ञान की सीमा बन जाती है। जद कोई कहता है ज्ञान परमात्मा तो आया, वो ही असीम हो जाता है। गुरु है, प्रसाद दयालु है, बख्शिंद है, रहीम है, रहमान है, बख्शिंद है, करुणाकर है, दयालु है। इथे तक मूल मंत्र मुख्तसर, ते हुण आप शब्द सरवण करो। हां जी,

इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नू अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने, जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करने जा रहे हैं, अरदास करने जा रहे हैं, सिर्फ अरदास करने जा रहे हैं। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करने जा रहे हैं, सेवा करने नहीं जा रहे हैं, पुण्य करने नहीं जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया पुन, सुने होया कीर्तन, सुनी हुई कथा, इसका फल की है अंदरों अरदास दा निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। ये कदों निकलती है? जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है। उंज नहीं निकलेगी, उंज बथेरी अरदास आउंदियां ते मनुख करदा। कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है, जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके, उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकलती है फिर व्यर्थ भी नहीं जाती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नु गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है, यक अर्ज असी अरदास कहने हैं। परशियन दे कहने ने अरजोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अरजोई है। संस्कृत दे, हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ने अर्ज करनी है, अरजोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है, अरदास करनी है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हथ जोड़ के अरजोई करने, दस्त बस्ता हथा नू जोड़ के अरजोई करने, बेनती करने, प्रार्थना करने। सतगुर कहंदे ने यक अर्ज, एक मेरी अरजोई, एक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, गोश कन्ना नु कहंदे ने। ऐ करतार जे तू कन ला के सुने, मनुख जिथे आंदा है उथे ही उसके कन आंदे ने। घर विच बैठी है मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे, नहीं सुन सकते क्योंकि असी जिथे बैठे हैं कन उथे ही ने। जिथों सानू सुनाया जा रहा उथे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आंदा है उसदियां इंद्रियां उथे ही आंदियां, उसकी जबान उथे ही आंदी है, उसदियां अखां उथे ही आंदियां। जिथे है उथे ते वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा, जिथे है सुन सकदा है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उहदे ज्ञान ते जद व्यापक है ते उहदा सुनना भी व्यापक है। किसे थां भी अरजोई कीती जा सकती है, किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हे प्रभु तू कन कर भाव सुन, हे करतार हे सृष्टि दे रचनहारे। एक अरजोई एक बेनती है। फिर अगलियां पंक्तियां च जिस दे अगों बेनती कर रहे ने उसकी महिमा बयान कर देना। हां जी,

0: प्राइस दीजिए सब्जी भले खाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं
1: जाना। पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचने करने ने, जे रुपये बाफर हो गए ता डॉलर इत्थे पहुंचने करने ता गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे ले लियो 604-349-1313 यूनिट 103 8840-120 स्ट्रीट सरी 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स दावा ते वादा पक्का।
2: समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती

0: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo
1: 604-9090 लाल गंडे 25 पाउंड दा बैग 1898 दा पीले गंडे 50 पाउंड दा बैग 2099 दा रॉ आलमंड्स 599 नु पाउंड अते 216 इंडिकन टी वाला पैक 599 दा
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
2: जा कॉल किरण @604-581-1900

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

0: तेजी सब्जी भले खाना है, रोटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचदे करने ने, जे रुपये बाफर हो गए ता डॉलर इत्थे पहुंचने करने ने, ता गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे ले लियो। 604-349-1313 यूनिट 103-8840-120 स्ट्रीट सरी 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स दावा ते वादा पक्का।
5: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.